0: नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सम्झना महर्जनसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
1: आज 2083 साल असोज 27 गते मंगलबार, सन् 2026 अक्टोबर 13 तारीक असोज शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि।
2: काया कैरन का साथ में
1: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
2: राष्ट्र कुसान किसान
1: अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।
0: काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबर का शीर्षकहरूबाट।
1: बूढ़ी गंडकी को बाढ़ी ले 200 घर बगे, ओत खोज्दै प्रभावित 5000 घर धुरी अंधकार में, चुम उपत्यका को पदयात्रा स्थगित।
0: यस वर्ष मुख्य चाड़ पर्व में अत्यावश्यक वस्तु को भाव अचाक्ली बढ़ा, उपभोक्ता मर्का में वर्षभर भित्रने रेमिट्यान्स को झण्डे 25% भदौदेखि कार्तिकसम्म भित्रने गरेको तथ्यांक।
1: प्रस्तावित राजदूतको सुनवाई शुरू, सुनार विरूद्ध महिला हिंसा र थापा विरूद्ध पीआरको आरोप।
0: भारतको जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने, प्रदर्शनका लागि 3 नयाँ ठाउँ तोकिए।
1: र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दै।

0: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी योद्धाले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नु सँगै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: टॉयस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
2: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास कि उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं।

कौन कहता है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: शिव दर्शन फिल्म्स प्राली सगौरव प्रस्तुत गर्दछ।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुस् भन्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: ट्राइ एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।